0: बोल एको कलयुग दे विच अब कलु आयो रे, एक नाम बोहो बोहो अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। ओ कलयुग दे लोको सुन लो, होर कोई कम ना करियो, कोई कम नहीं फलना, किसे देवी देवता की पूजा ना करियो, मड़ी मसाणी ना पूजियो। कलयुग विच सिर्फ वाहेगुरु मंत्र दा राज है, वाहेगुरु कहो।
1: भला तुम्हारा राज हुए सकल सिद्ध हुए वाच,
0: तेरा भला राज होवेगा और सारे कहे हुए जेड़े बचन ने ए सिद्ध हो जाणगे।
1: थोड़ी करनी फल अधिक तीन राखियो साच,
0: कलयुग दे विच थोड़ी करनी करनगे लोक, थोड़ी करनी दा फल ज्यादा होया करेगा। इस तरह तिना युगां दे विच अपने समय च जान रखी कि नाम दी थोड़ी करनी दा फल बहुता। पहलियां युगां विच लोक लखां बरस तप कर कर मर जांदे सी पुठे लटक लटक के, उदों नहीं सी इन्ना फल मिलदा हुंदा लोकां नूं। पर कलयुग दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आप भी ये बचन लिखे ने, एक चित जे एक छिन ध्यायो काल फास के बीच ना आयो।
1: पर अंशी पर नार तज नाम सरा है सुवात,
0: इन्हां गल्लां दा ध्यान रखो। तीन चीजां दा पर अंश खाणी पराई इस्त्री वल जाना, ये दो गल्लां दा ध्यान रखना। ये तो कर्म करने नहीं, पर धन दोख किस पाप ना फेड़े, जम जंदार ना आवे नेड़े। पराया धन पर इस्त्री पर निंदा, इन्हों का तो भाई त्याग करा। बाकी तीजी गल तेन ये दसदे हैं कलयुग के समय दे।

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तवीत ने टूने डामण ने इन्हां दा बहुत जोर वध जाएगा।
0: लोग करेंगे जगत में मेरा सिख ना चाहे।
1: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिहदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे पर मेरा सिख इस पासे दी चाहना ना करेगा।
0: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजे बाज।
1: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंत्र करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं बाकी शहरां दी खबर नहीं आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे दी संगत इह कहिंदी है वी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्हां ने तां सिद्धा ही इह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आ के वी बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़दे आ साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई। सो इस करके उत्थे जा के जदों यह कहीदा बई जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे। क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दें एक वचन नाल मार दें। पर यह दुष्टा शस्त्रां नाल कटना है दैंता नूं मारना है। इस प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्ने भी जाप साहब के पाठ हो जाण चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण। इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतु करते हैं चौबी साहब से समा आ जाएगा जब तुसी खुदे कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो क्योंकि यदि जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इस प्रकार आइयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो ए भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब 84 लाख जून के मालक ने इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी है।
0: जप तप नेचा नारा कर है देखत साज।
1: ना कोई जप रहेगा ना कोई तप रहेगा ना कोई निश्चा रहेगा। लोग ऐहे जे बन जाणगे सारे जाने कि लोगों के जिहड़े भरोसे ने वो टुट जाणगे ते साजबाज जिहड़ा दिखावटी बनावटी कम इन्हां दे विच लोग ज्यादा प्रवृत्त हो जाणगे।
0: जैसी गुर के भावने भावना तैसी गत होए शक्त।
1: सो जिस प्रकार की जिहड़ी है ना भावना प्राप्त हुंदी है तैसी शक्ति प्राप्त होवेगी जिही जी सिख दे विच भावना हुंदी है।
0: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त।
1: इस करके वाहेगुरु सच्चे पातशाह दी शरण ग्रहण करो। इस करके धन गुरु रामदास जी का जाप करो। धन गुरु नानक देव जी कृपा करनगे अथवा परमात्मा की मेहर होवेगी ताइयों कुछ बनेगा। जे निश्चय नाल बैठा रहेगा ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਪ ਸਗਲ ਕਰੇਂਗੇ ਕਾਮ
1: ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਖੋ

0: सतगुरु कहते कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दो जी जागदियां रूहां एकाग्रता बख्शियो कहते आ जेडे सुवास इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरू वाहिगुरू गल करो
1: वाहिगुरू
0: खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जेहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे
2: टिंड
0: माल ते जेहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जे सुवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सुवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं तू आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन जोगो सरवण कीता इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं जो कौन किहनूं जो मन नूं विच जोड़ो जोगो दा मतलब जोड़ दिओ जो दिओ आपां कहिंदे बलद जोड़ दित्ते इहदे इस खूह दीआं माला टिंडा खिचण लई मन नूं बलद बणाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इहनां टिंडां नूं खिच अगे जाके कहते अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलो ना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानू पता पिंडां दे रहण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आज सुवासा की टिंडा की माला ए मन नू जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे तो मैं धन गुरु ग्रंथ साहब पिता जी पूछा महाराज शरीर से कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री कद के बोलो सतनाम महाराज खेतों में क्यारे होंगे इतने क्यारे कहड़े कहते अखा नाम जपन वाले दमृत ना भर दिंदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बोलने लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा फिर आखिया महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत भर दी गल कर लगता वा ते कहने फलाना बंदा भजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपन वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती

ये मन च बरार हो गया ते भाई जैते ने कहा वो अंदर दिया जानन वाला गोविंद राय एक दिन आऊगा। एक दिन फिर संस्कार कर दिता गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह का शीस गुरुद्वारा आनंदपुर साहब विखे ते महाराज पातशाह ते भाई जैता बाग दे विच सैर कर रहे ते उस फकीर दियां अरदासां तां पहुंच चुकियां सी। मेरे सतगुरु गरीब नवाज ने आख्या भाई जैत्या जो दिल्ली तुरियो किथे किथे गयो आओ दी किस्मत खुलन लगी आखिर सतनाम श्री दिल्ली तुरियो किथे किथे गयो ते दसदे गए आ गई उस जगह ते जिथे महाराज 105 साल का चुप फकीर गुरु नानक दे दीदार लई भुखा बैठा सी। जदो मैं जाके उन्हां दी मंजी ते पिता जी का शीश टकाया उन्हें अरदास कीती मैं गल्लां करनियां चाहुणा ते मेरे गरीब नाथ पातशाह अजे 10 साल की उम्र है घोड़े ते चढ़े नाल सिखां नूं लिया चंडीगढ़ ते राजपुरे दे विचकार जगह है जिथे उस फकीर की कुटिया दे अगे आके आख्या फकीर जी असीं आ गए हां। फकीर की कुटिया च गए अजे कद महाराज का छोटा सी फकीर उच्चा लंबा सी फकीर बैठा सी सतगुरु खलोते सी सतगुरु ने गल ना ला लिया फकीर खलोत्या ध्यान दो सुरत विच लियाओ बैठे हुए शरीर नू गल ना ला के ते मैं पन्ने पढ़े मथा चुमिया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस फकीर का इस मथे का धन है मथा जरा गुरु नू पुकारदा रहा जरा सारी उम्र वार्ता करता रहा मन बैराग पाया दर्शन देखने का चाहो ते फिर फकीर ने आख्या महाराज तुसी गुरु तेग बहादुर महाराज के पुत्र हो ते मैं ता मंग बड़ी अनोखी लैके बैठा आखो सतनाम श्री ध्यान देना जरा आखो सतनाम श्री महाराज पातशाह कहते दस की मंग लैके बाबा बैठा है वीर जी की मंग लेके बैठे हो महाराज मैं मंग ए लैके बैठा कि गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह नू सारी उम्र सारी रात जदों मैं अपने मंजे ते शीश रखिया ते मैं सारी रात रोंदा हां ते इक किथे वचन मेरे मुंह निकलदा सी जिस तरह मैं तेनू मंजे ते वालिया कलगिया वाले पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज नवे सतगुरु जी जे तुहाडी मेहर होवे दरगाह च इन्नी कु मंजी जोगी जगह मिलदी असीं इत्थे दित्ती तुहानू ते तुसीं उत्थे जगह दे दिओ। फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह गोबिंद राय जी ने कहा वीर जी तुसीं मंजी जोगी जगह मंगी आ ना जे गुरु नानक दे चरणां नाल इन्ना प्यार कीता जे ते सारी दरगाह ही तुहाडे नां लिखती दरगाह ही ते तुसीं जायो एक बार आखो वाहेगुरू नहीं कह रहा चंडीगढ़ जीत कुपरों अगे आयो एक गुरुद्वारा एक ते नाटा साहब है एक नाभा साहब वेखिया उहदे परले पासे एक दरगाह है पीर दी उस पीर दा कदी नां ते पढ़िओ जाके गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उहदा नां रखता दरगाही मल की जी दरगाही तेरे नां लिखती वीर जी दरगाह ही तुहानू देती तुसीं मेरे बापू नूं गुरु नानक दी गोद नूं मंजे ते पाया ते अज गुरु नानक साहब ने सारी दरगाह ही तुहाडे नां लिख दित्ती तुसीं पीर दरगाही मन जे ते अज तक गुरु के प्यारे उस मालक दे कहो के सतगुरु अज

0: हमारी बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

ऐसे गुरु तो वारे वारे जावा जेडे मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने राजयां दी पूजा विच नहीं लाया। आख्या नहीं वह परमेश्वर जिहदी पूजा करनी आ वह राजान राज आ। बोलो राजान, राजयां दा भी राजा है। किसे राजे दी पूजा विच नहीं ला दिता। समय असमय अनुसार राजे जिहड़े होए ने उन्हां दी भी पूजा संसार विच हुंदी आई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने सिख नूं इह बख्शिश कीती कि किसे राजे दी पूजा नहीं करनी, राजयां दे राजे दी पूजा करनी। राजान राज, गरीब नवाज पातशाह। लोकी दिन चढ़दा है गड़बियां लिख के पानी दियां, जग लिख के पानी दियां, सूरज नूं मत्था टेकदे ने, सूरज दी पूजा करदे ने। साहब ने कहा नहीं, सूरज दी पूजा नहीं करनी, जिहदी सूरज पूजा करनी है वह पानान पान आ, वह सूरजां दा भी सूरज आ, उहदी पूजा विच लगना है। आख्या महाराज लोकी मस्या तो दो तीन दिन बाद पैसे सुटदे ने, चंद्रमा की पूजा करदे ने। सतगुरु पातशाह कहण लगे नहीं, चंद्रमा दे हाथ वास कुछ नहीं, चंद्रमा अपने कोलों रोशनी नहीं दिंदा, नमो चंद्र चंद्रे की पूजा करनी। आख्या महाराज देवी देवत्या की पूजा करिए, कहण लगे नहीं देवी देवत्या की पूजा नहीं करनी। कहण लगे किनू पूजिए, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे ओ देवान देव आ, देवत्या का भी ओ देवता है, ओदी पूजा विच मेरे मालक ने इन्हां सारे संसार दीआं पूजां विचों ला के मरियां दीआं कबरां तो चुक के बांह फड़ के आख्या ओ भोलिया मरियां दीआं कबरां ते मत्था ना टेक, आ मैं तेनू दसा जागत जोत जपे निस बासर, बुझियां जोतां दे उत्ते मत्था टेक, जागदी जोत नूं मत्था टेक, शब्द सदा जपदी जोत आ, जिहदे लड़ लाउण वाले बापू नूं इक वार फिर आखो गुर

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

गुरु गुरु गुरु अखरिवा हे गुरु। आओ जुड़िए सतगुरु दे चरणा नाल। मेरा साहब कृपा करे ए जिहड़ियां घड़ियां आपां नूं नसीब होईयां ने चिम चिम अमृत वरसदा। एक थां ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने ऐसा वरिया ऐसा वरिया ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। ऊनम दा मतलब हुंदा है नीवा नीवा। जदों बदल सावण दे भादरों दे महीने विच झड़ियां लगदियां ने ते गुरमुख प्यारे बदल ए लगदा जी कोठियां दे नाल लग गया। आखो सतनाम श्री। इतना हुण आपां नूं नाम जपदियां नूं लगदा सी कि गुरु साडे कोल आ गया। ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। नीवा नीवा बदल बन के गुरु कोल आ गया ते वरसे लाए झड़ी। वरसे लाए झड़ी लगी। वेखी ना कई बार सत सत दिन अठ अठ दिन नौ नौ दिन फिर बदल हटन दा नाम ही नहीं लैंदा। पंद्रह पंद्रह दिन पानिया वटा बन्ने तोड़ के लै जांदा है झड़ियां ला के वरस पैंदा है। इसे तरह मेरा सतगुरु मिल कर कृपा करे ए जेहड़े तेरह चौदह दिन अपने बाकी ने झड़ी ला के सतगुरु वर जावे। वाह।

0: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय
1: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय।
0: पहले दो चार हफ्ते तीन दी पहलों की गल हो जिधर एले तो कथा खत्म करके गए फ्री मोड, एक बच्ची नाम सी मनजीत कौर आनके कहन लगी साडे घर प्रशादा छकन चलना है, घर विच विपता बड़ी पई, दुविधा बड़ी घर विच पई। दास ने बेनती की होया, कहन लगी बड़े दुखी हां, एक बार आनके अरदास करो। मैं क्या हुण समा नहीं, मेरी धीए फिर कदी आऊं, पर मैनूं इत्थे दस की होया तेरे घर विच, तू अमृत छकिया? मैनूं इतना लगदा वा कि तेरियां बीमारियां दा इक्को ही कारण है कि तू परमेश्वर तों बेमुख है, परमेश्वर तों किते मेरा गुरु कृपा करे, मेरे गुरु नानक वर्गे प्रचारक मिलन, ते कोई पुछे जी मैं बड़ा दुखी हां, ते मेरा गुरु नानक पातशाह आखे जय तन बाणी विसर जाए, तेरे दुखां दा कारण एहो ही हो कि तेनू परमेश्वर दा नाम भुल गया। ओनू बच्ची नू मैं बेनती कीती, मैं कहा धीए अमृत छगला गुरु वाली बन जा, नितनेम करिया कर। मेरे गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने एक वचन कीता, हर गाओ मंगल नित सखिए, बोलो हर गाओ। फिर एक बार प्यार नाल आप जी नू पता लग जाए, हर गाओ मंगल एक दिन नहीं नित, रोज उठ के नितनेम करिया कर। हे सखी हे जीव आत्मा, फिर सोग दुख ना व्यापे, बाणी पढ़ के वेखो, सोग दुख तेरे घर कोई दुख कोई दलिद्र कदी आवे ही ना, तू रोज उठ के नितनेम करिया कर। कहन लगी बाबा जी अमृत ते मैं छकिया सी। मैं कहा फिर परवटे ते तेरे कट्टे ने, बेदबी ते तू रोमा दी कीती है, तू कह नहीं मैं अमर छकिया? कहिंदी जी ये तुहाडे प्रचारक ने सब कुछ करवाया। आर सुन लो हुण मैं जिहड़ा वचन कहन लगा आप जी नूं, मैं कहा जी प्रचारक ने करवाया? प्रचारक दा ते काम हुंदा है कि परमेश्वर दे नाल जोड़ना, टुटे हुए नूं कहना पे प्यारिया परमेश्वर दे नाल जुड़ जा। कहन लगी जी एस कनोगा पार्क गुरुद्वारे, ध्यान देना कनोगा पार्क गुरुद्वारा एले दे विच, चौंकड़े मार के सोरी तरह बैठो सुचेत हो के, कनोगा पार्क गुरुद्वारे एक कथावाच कथा कर रहा है। मैं कहा जी हुण भी? कहिंदी हां। मैं कहा जी ना की है? कहिंदी शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम, ध्यान दिओ शब्द प्रकाश सिंह उहदा नाम है, नखलोग दा रहण वाला है, ते ओ काला इलम जानदा है। आखो सतनाम श्री। मैं कहा जी काला इलम जानदा कोई गल नहीं, फिर काला ते काली दे राहत हुंदी, काला काला ते पाप दा वच किया, फिर कड़ी गल है तेनू जानदा, तू नितनेम करदी तेनू की हो गया? कहिंदी जी मैं ओनू भी यही बेनती कीती जिहड़ी तुहानू कीती, कि उहने कहा मैं तेरे घर आण के उहदा इलाज लवूंगा। मेरे घर गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश सी, उहने सब तों ते पहलो आखिया कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे थले काला इलम लिखणा है, थले जिहड़ी चादर है ना उत्ते उन्हें पेंसिल दे नाल काला इलम लिखिया। ध्यान दिओ साडे विच कालियां भेडां किन्नियां तुरियां फिरदियां, गुरु नानक दे बाणी दे विच प्रचारकां दे नाम दे उत्ते की कुछ हो रहा है, काला इलम उन्हें थले लिखिया। फिर मैं उन्हूं आखिया कोई मंत्र जंत्र, मंदी मैं ते भुली सां, मैं ते आखिया मैनूं कोई मंत्र जंत्र दसो जिहदा मेरा भला, दुखी बंदा तां हर पासे तुरदा है। उह कहिंदा मेरा जंत्र तां चलूगा जे तूं कृपान लाएंगे ते, गुरु नानक दी बख्शी दसवें पातशाह दी गल विचों कृपान ला, कड़ा ला, कंघा रख दे, केसां दी बेदबी कर दे, कशहरा सतगुरु दा दित्या बख्शे पंजे ककार ला दे, ते फिर मैं अपना मंत्र पढ़ूंगा, पंजे ककार उन्हें मेरे लवा दिते ने, ते फिर भी मेरा बनिया कुछ नहीं, मैनू ते बर्बाद करके रख दिता है। ते फिर गुरु दे सिख भेजे, गुरु प्यारे उन्हूं जाके पकड़िया, पकड़ के उन्हूं पुछया क्यों भाई ये गल हुई है? कहिंदा हां हुई है, मेरे काले मंत्र दे सामने कोई टेक के विखावे मैं ते पटाके पा दूं, इतना दे वचन बोलने लगा। फिर गुरु नानक पातशाह दा प्यारा एक सिख चौंकड़ा मार के बह गया सामने, कहिंदा चला हुण मंत्र तेरा, केड़ा तेरा मंत्र है, चला मेरे सामने, चला मेरे सतगुरु दे मंत्रां दे मंत्र दे अगे अपना मंत्र, जंत्रां दे जंत्र दे अगे। गल विश्वास दी आ, सानू डर आउंदा है, असी गुरु नानक दा मंत्र कमाया नहीं, असी गुरु नानक दे मंत्र उते विश्वास नहीं कीता। गुरु दे प्यारियो चौंकड़ा मार के गुरु दे सिख ने मूल मंत्र दा पाठ शुरू कीता है, दसा मिनटां बाद उठ के कहन लगा जी मेरे कोल गलती हो गई, मेरा मंत्र नहीं चलदा, नहीं चलना ए किसे मंत्र, इस मंत्र अगे कोई मंत्र नहीं चलना, मगर तुसी दृढ़ करके पहलो एदा जाप कर लो, फिर गुरु नानक पातशाह तुहाडे उते रहमता करूगा। हुण ते गुरमुख प्यारियो निकल गया इथो भज के, कोई पटाका भी नहीं पा सकिया, कुछ कर भी नहीं सकिया, क्योंकि चोर ते चोर ही है ना, चोर ते चोर ही, पिंडा विच की कहिंदे चोर दे की नहीं हुंदे पैर, नहीं चोर किते टिकदा थोड़ा है। धन गुरु नानक दी बाणी दा कोई उपदेश हुंदा, वड्डे तो वड्डे चैलेंज करन वाले नूं कहिंदा आ पई, ते गवाही देंदा कि ऐ वेख आ शब्द मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दे ऐस पन्ने ते लिखिया है। मेरा सतगुरु कृपा करे, मैं कह रहा सा जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर उलामा मिले, ताही उलामा मिलता, जे गुरु नानक दा सिख कितों मंत्र जंतर तंत्र कराउंदा है, ते आपां ते सारे कम्मां लई की करना है।

0: आधार सत नाम नु आधार बनाओ, परमेश्वर की बंदगी नु आधार बनाओ। आओ हुण रीढ़ की हड्डी सिद्धी करो, समा दौड़ चलिया। मेरा सतगुरु कृपा करे कुछ समा नक की कुरुंबड़ी ते सुरत टका के अंदरले विचार बंद करके जप के वेखो, मेरे सतगुरु का अमृत डोलन लग पैंदा है अंदरों। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।
1: जप्या करो अमृत वेले उठ के, अमृत वेले खुराक खाया करो। सर्व रोग का औखद नाम बोलो, सर्व रोग का औखद सारियां बीमारियां दी दवाई जे सतनाम श्री वाहिगुरु। जेड़ा रब दा नाम है अवर अपाव सब त्याग गया, दारू नाम लिया छड़ दियो सारे अपा करने। अपन बड़े मिलदे ने ओ जी औलाद आखे नहीं लगदी, ते लागो गवांडी की सलाह देंदे की करो कोई उपा करो। अपा शब्द वरतदे ना इथे गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सगल अपाव सब त्यागया अवर अपाव सब, सारे अपाव करने छड़ दिते। आखिया की कीता फिर तुसीं?

ऊच भगवाना तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गुरु प्यारे हो सत्संगियो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दी असीस दा सदका मेहर दा सदका बख्शिश दा सदका आप जी गुरु द्वारे आए हो इथों गुरबाणी विच इस तरह लिखिया कि जीवन दी सोझी मिलदी सोझी तो वे होना मनुख भटक जांदा है सतगुरु जी कहिंदे गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी जिन्ने तुसी मेरे भैण भरा बैठे सचेत हो इस गल नूं दृढ़ता विच अपने फुरनिया विच लियाओ कि गुरु दे कोल जदों आईए जीवन दी सोझी मिलदी आ कि जीवन कितना बतीत करना है जीवन विच आपां की करना है ते की नहीं करना की बोलना है ते की नहीं बोलना अमृत वेले अज विचार चल रहा सी किसे गुरसिख दे नाल कि मूंह तो किहो जे बचन बोलने चाहीदे सतगुरु दा एक बचन है सगल बोलन के माहे विचार बोलो सगल बोलन के माहे जिन्ना बोलो विचार के बोलो की मूंह चो गल कढ़न लगे हो एक बोल ही ते है जिहड़ा जिंदगी भर दियां दुश्मनियां पा दिंदा है एक बोल ही है जिहड़ा जिंदगी भर दियां दुश्मनियां खत्म कर दिंदा है फिर सतगुरु नूं पुछिया गरीब नवाज पातशाह होर बोलन विच

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे के जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आन के दोवे बावा पहाड़ पहाड़ जिड़िया भारी भजान के भारी भरोसो वड्डिया बावा वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा साव उदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारे हो मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

नाम, साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है। जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार छफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुठा मूह थले नूं लत्तां तां नूं ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नु याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छड़ाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छड़ाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छड़ाया, खसम दे वाहेगुरु ने। ते जदों इथों छड़ा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के उथों छड़ा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छड़ा के बाहर लिया। विचों गर्भे निकल आया, बोलो विचों गर्भे निकल आया। जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार
ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਅਗਨ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜੂੰਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ

नानक बोले बलाया तेरा, नानक बोले बलाया तेरा, ज्यों बलाए त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, ज्यों बलावे त्यों

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरियां मोतियां जवाहरां नाल मड़ी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए। बोलो तां व्यापारी। व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो। हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल देना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उन्हूं लोकी कहिंदे नहीं इनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल। तां वा गुरमुख प्यारे हो कि कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ। लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने दसा रुपया की रास पा के दिती सी, इह दसा दे नाल सौ कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है। मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर की बंदगी करके लाहा खट के आई। मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेडे मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु की गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख।

0: गुरमुख लाल गए, गुरमुख लाल गए,
1: गुरमुख लाल गए,
0: चले मूल गवाए मनमुख चल

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़फ पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे, मेरिया अखा ओ रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसीं वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

आख्या दो चार दिन कट मैं आऊंगा। उन्हें कहा ना नैन हमारे फिर आए रंग रंगारे एक तिल पी ना तरीजे हुण ते एक तिल मात्र धीरज नहीं कर दे ए ते इश्कों इथो तक पहुंच गया प्रभ स्यों मन लीना प्रभु दे चरना च मन इतना लीन हो गया कितना ज्यो जल मीना जितना जल तो बिना पानी तरफ तरफ के मर जांदी है मच्छी इतना सजना हुण जे एक मिनट परमेश्वर नहीं मिलदा ते मेरी हालत ए होगी मच्छी वर्गी मैं तड़फ तड़फ के मर जूंगी। प्रभ स्यों मन लीना ज्यो जल मीना चातरक जिवें तसंतिया जितना चातरक तरसदा वा उस बूंदली वो मेरी हालत होगी। सजना एक बार किते मिला एक बार ओदी खबर दस मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी कहिंदे ने फिर उन्हें आख्या आ दसा ओदे मिलन दी निशानी आखो सतनाम श्री सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी तुहाडे विचों भी किसे नूं प्यास लगी होवे तुहाडे विचों भी किसे नूं भुख लगी होवे ते मेरे मालक दी बाणी विच लिखिया सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी मन तन दे दे लोकां दी शर्म छड़ दे। आ जिहड़े मेरे वीर भैण भरा अज विछड़े बैठे आ जी भी करदा है मिलन नूं मगर लोकां दी शर्म पिछे दाड़े काले करदे आ लोकां दी शर्म पिछे भरवट्टे कटदे आ लोकां दी शर्म पिछे वाल काले करदे आ लोकां दी शर्म पिछे समाज दे रस्मां पूरियां करन विच रब नालों टुटदे ने। प्रभु ने उन्हें प्यारे ने आख्या आ मैं तेनू दसा रब कि तरह मिलदा मान तन अर्प बोलो मान तन ते ताज लो लाज लोकानी लोकां दी शर्म करनी छड़ दे आ उस परमेश्वर दे चरणा विच आण के जब नाची तब घूंघट कैसा हुण ओदे चरणा च ओदी खुशी लैण लई ओदे अगे आण के बेनतियां कर इक भोरी दर्शन दी जय इक भोरी दर्शन दी जय इक भोरी एक वचन होर बड़ा सुंदर गुरु नानक साहब ने विछोड़े दा कीता है आ जदों हुण आ महीना मुकना है ना ते अगला महीना पता चढ़ना है ते तुसी सारियां संगतां ने कर्मां वालियां रूहां ने जुड़ के कहना भैणे

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चौर हो सकता है होर किसी चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है इहदी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्स दिखाए जी एक छिन दर्स दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

0: आओ जुड़ो, आखो सतनाम श्री, नाभी चो आखो सतनाम, फिर एक बार खिंच के आखो सतनाम श्री, अपने परिवार दे भले ली आखो सतनाम श्री, पंथ दी चढ़दी कला ली आखो सतनाम श्री। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करिए। कल जो आप जी ने सरवण कीता सी ओ तो अगे मेरे गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे बचन घर विच की बोलना है, दृढ़ कर लो, दृढ़ कर लो, चेता कर लो, चेता चेता, कि कलयुग विच चेता ही भुल गया तां ही सब कुछ हो गया, परमेश्वर ते भुलिया चेता ही भुल गया, चेता आवे उस पार ब्रह्म तां लगे ना, चित आ जाए, जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दई वसाया, वह घर वस जाते ने जिथे गुरु दी बचन चेते आ जाना। गुरमुखी बोलिया करो अपने बच्चों के नाल, घर विच अपने जीवन विच पंजाबी नू लियाओ, मिठी बोली आ आप जी दी, सतगुरु कृपा करे। आओ सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फलीता ए बेशक तलिया खंड लेवार।
0: आखो सतनाम श्री वाहे। बाबा फरीद जी कहिंदे इह जिहड़े दुनिया दे पदार्थ ने, इह जिहड़े दुनिया दे भोग ने, इह है ने यार दियां गंदलां। गंदलां समझदे हो ना, गंदलां साग दियां गंदलां नहीं तोड़दे हुंदे, उहनां वल ध्यान जरा लै लो। इह दुनिया दे जिन्ने पदार्थवाद जिहनूं आपां इकट्ठा करी जांदे आ, साहिब जी कहिंदे इह यार दियां गंदलां ने, यार दियां कादियां, ए विस गंदलां, बोलो ए, ते प्यारियां को लगदियां जी। कहंदे धरियां खंड लवाड़, धरियां जितना कुनैन दी गोली खानी होवे ते उहदे उत्ते मिठा चमकाया हुंदा ना। ए जिहड़े दुनिया दे पदार्थ ने अंदरों यैर ने, खसम वसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध। ए हर चीज वेखण नूं मिठी लगदी, दुनिया दे भोग मिठे लगदे ने, दुनिया दे पदार्थ मिठे लगदे आ। माया जिन्नी घर विच आवे उन्नी चंगी लगदी आ। भैण भरा सज्जन मित्र, एक थां ते गुरु अर्जन देव साहब ने कह दिता, प्रभ स्वामी कंत वेहुणिया, प्रभ स्वामी कंत वेहुणिया, मीत सज्जन सब जाम। जाम मैने जम, एक परमेश्वर तो बिना जिन्ने मित्र सज्जन ने ना, सज्जना एक ही ने, जम ने, जम जम, तेनू खाण ली तेरे नाल चंबड़े ने। मेरे साहब जी इत्थे कहिंदे ने, फरीदा ए विस गंदलां, ए दुनिया दे पदार्थ जहर दियां गंदलां ने, मगर एक धरिया खंड लेवाड़। इना लिप ने एडा मिठा करता, पुत भी चंगा लगता, धी भी चंगी लगती, पैसा भी चंगा लगता, दुनिया का हर पदार्थ, दुनिया की हर पदवी, दुनिया की हर शह चंगी लगती, मगर मेरे साहब कहिंदे जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले, मगर जे तिस नजर ना आवई हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां व्यापे जा को ओढ़ तुहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना ए सर्प जैसे अरजारी। अगे सुनो, नव खंडन को राज कमावे, दुनिया दे पदार्थ नवा खंडा दा कोई राजा बन जाए, मगर मेरे साहब कहिंदे अंत चले गो हारी, अंत हार के जाऊ, क्योंकि ए चीजां वेखण नूं सोहणियां लगदियां। हर चीज जे किसे नूं पदवी मिल जाए ते गुरमुख प्यारे उहदा जोड़े झाड़ नूं दिल नहीं करदा, ना ना ना। तुसी की सोचदे कोई मिनिस्टर आण के इत्थे जोड़े झाड़ू, तुसी की सोचदे किसे गुरुद्वारे दा प्रधान कदी जोड़े झाड़दे वेख्या जे, किसे गुरुद्वारे दे सैकटरी नूं जूठे बर्तन साफ करदे वेख्या जे। तुसी सोचो जरा, अपने अंदर झाती मारो, इथों आले ना समझ लो कि सानू कहण डिया। मैं समुचे गुरु नानक पातशाह दे घर दी गल कर रिहा, मेरी हाथ जोड़ के बेनती, अपने अंदर झाती मारो। पदवी ने परमेश्वर वसार दिता, पैसे वाला कदी न्यो के जोड़े नहीं साफ करता। दुनिया ते जिड्डा वड्डा बंदा बन गया ओडा ही रब नालों दूर हो गया। ते मेरे साहब जी कहिंदे इन्हां ने सारियां दातां ने ए इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण वसारे, तुमरे महाराज ये की मेरे घर आई उधर तो तू ही भुल गए दात प्यारी विसरिया दतारा दाता चंगिया लग पिया दाता विसरदा गया विसरदा गया विसरदा गया ते फिर वेख लो मेरे साहब जी कहिंदे ने लगन जन्म वजोग जन्मा दे विछोड़े पै जांदे ने। बाबा फरीद जी कहिंदे दुनिया दे लोको ए दुनिया दा हर पदार्थ वेखण नू सोहना लगदा है। ए विस गंदणा धरियां खंड लेवाड़ ए खंड ला के लेपन करके मिठे भोग लगदे ने वेखण नू। हां जी
1: एक राहिंदे लह गए एक रांधी गए उजाड़
0: एक बीज दे चले गए एक बीजियां छड़ के चले गए कुछ ते बीज दे रहे उन्हां दा जीवन इतना ही चले गया कुछ बीजदे ए विस दियां गंदला कट्ठियां करदे पन्ना कट्ठियां करदे करदे करदे करदे कोई लखपति बन गया कोई दो लखपति बन गया कोई करोड़पति बन गया ते पता उदन ही लग्या जिदन उत्तों सदा आ गया। आखो सतनाम श्री बाबा जी ने एक बचन किया है कहिंदे रात कारण धन संचिए रात कारण फिर बोलो एक बार रात कारण संचिए मैंने कट्ठा करिए रात कारण धन संचिए ते अगे कहिंदे भलके चलन होए भलके रात नूं ऐ जोड़ जाड़ के कट्ठे करके सराहने थले रख कहिंदा आ इन्ने कट्ठे कर लई हुण लखपति बन गया करोड़पति बन गया मगर सवेरे सदा आ गया भलके चलन होए ते अगे कहा नानक नाल ना चले वो जिहड़ा पैसा जोड़िया नानक ते फिर पछतावा होए फिर पछतावा होए फिर पछतावे तो बिना पल्ले कख नहीं रह जांदा। कहिंदे एक बीज दे रह गए एक बीज के चले गए मगर सारे उजाड़ा ही करके चले गए कोई असली चीज ना बीज के खड़ी जेड़े नाम दी खेती ता मेरे साहब कहिंदे ने बीजो

सत्कार मानी मुबारक आ गुरुद्वारे आना गुरबाणी नु सुनना गुरुद्वारे आउंदियां गुरबाणी सुनदियां फिर भी सानू धागियां तवीतां वल क्यों भटकना पैंदा है फिर भी कच्चे पिल्लियां गुरुआं वल क्यों जाना पैंदा है कसर इत्थे ही रह गई कि जो गुरु दे उपदेश सुने उन्हां नू कमाया जे कदी सिख गुरु दे कहे होए बजना नू कमावे जो गुरु साहब ने बजन आपां नू बाणी दे विच कहे ने उस अनुसार जीवन ढाले सारे संसार तो सनुखा ते भागां वाला गुरु दा सिख होवे ये भी केवल हजारां सालां तो जितना लोकी मस्जिद विच जाके शेर नवाउंदे ने मंदरां विच जाके टल खड़काउंदे ने प्रसाद चढ़ाउंदे ने आस्ते आस्ते साडे विच भी वह ब्राह्मणवाद तसदा जा रहा है इत्थे केवल प्रसाद चढ़ाउण नूं प्रधानता नहीं रुमाले चढ़ाउण नूं प्रधानता नहीं इस घर विच मुबारकबाद उन्हूं मिलदी है जिहड़ा गुरु दे कहे होए बचनां नूं अपने जीवन दे विच ढालदा है जो गुरु कहिंदा है उस अनुसार अपना जीवन जिहड़ा बतीत करदा है वह गुरु दा सिख है सब तों वड्डे भाग गुरसिखां गे जो गुरचरणी सिख पढ़ते प्यारे भाई बख्शीश सिंह साहब पढ़ रहे सी जे कदी ए पूरियां तुकां जीवन दियां विच उत्तर आउण ए पूरियां तुकां जीवन विच हां तिस घोल घमाया भाई गुरदास जी हां तिस गज के दसो हां तिस फिर गज के आखो हां तिस घोल घमाउणा दा वारे वारे जाना भाई गुरदास जी कहिंदे मैं उहदे तों घोल घमाउणा वारे वारे जाना जिन्हां दे हिरदिआं च गरीबी आ गई गरीबी निम्रता आ गई जिन्हां दे हिरदिआं च जिहड़े मिट गए हां तिस घोल घमाया पहलां गरीबी आवे फिर जिहड़ा दूसरा वचन मेरे गरीब नवाज ने कीता है पर नारी के नेड़ ना जावे बोलो पर नारी के समझ लियो जरा उच्ची सारी आखो पर नारी के नेड़ ना जावे ये मुबारक जीवन दियां कड़ियां ने जिहड़ियां सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दे पावन विद्वान ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा भाई गुरुदास जी ने आपां दे नाल सांझियां कीतियां हां तिस घोल घमाया गुरमत हिरदे गरीबी आवे हां तिस घोल घमाया पर नारी के नेड़ ना जावे तीसरा हां तिस घोल घमाया पर दरबे नूं हथ ना लावे पई होवे करोड़ां रुपया किसे दी माया अज ते आपां गुरसिख प्यारे मिथ के ये काम कर रहे हैं ना भी लुट लो जिन्हूं लुटिया जांदा है आखो सतनाम श्री मार लो धर्म दे नाम दे उत्ते कौम नाल विश्वास घात भी कर दो धर्म दे नाम दे उत्ते गुरु घर दे नाल भी लुट्टा मार लो जो कुछ हुंदा है गुरु दे नाम उत्ते भी जे लुटिया जांदा ते लुट लो 84 दे कांड तो बाद जिन्हां धर्म दे नाम दे उत्ते सिख ने सिखां नूं लुटिया होर किसे ने लुटिया सतगुरु ते कह रहे ने हक पराया नानका उस सूर उस गाय मगर आपां खूब रज के गां खाधी सूर खाधा हक पराए नूं आपां खाधा कदी किसे दे नाम दे उत्ते कोई इत्थे तुहाडे कोल आउंदा जी मैं फलाने थां ते कॉलेज बना रहा तुहाडी हक हलाल दी एक एक डालर इकट्ठा कीता अपने निजी स्वार्थां लई लोकी खर्चदे कोई कहिंदा मैं इंडिया दे विच लोकां गरीब शादी करदा बच्चियां दी कोई इस तरह पैसे कमा रहा है गुरु की कह रहा है गुरु कह रहा हां तिस घोल घमाया पर दरबे नूं हथ ना लावे पराए पैसे नूं की ना करे हथ ना लावे हां तिस घोल घमाया पर निंदा सुन आप हटावे किसे दी निंदिया हुंदी होवे उत्थों अपने आप नूं परे कर लै सारियां गल्लां सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने आपां नूं समझाईयां ने मगर गुरमुख प्यारे हो अज दे उपदेश विचो तुसी एहो ही धारण करके जाओ हां तिस घोल घमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे
ਅੱਜ ਜੋੜੋ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੈਂ ਅਠਾਰਾਂ ਵੀਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਹੋਵਾਂ। ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਆਖਾਂ ਮੇਰ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੀ ਲੁੱਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੋਹਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਨੇ ਨੇੜ ਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੀ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਵੇਖ ਲੋ, ਕਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨੀ ਲੱਭਦਾ, ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਣ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਅਸੀਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਸੋਈਏ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੋਹੇ

ज्यों बुलावहो ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। तुमरी गात मेत तुम ही जानी,

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पए, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पए। आखिर राज की ध्यान दे, आखिर राज की शक्ति की। धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया ओ चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ए जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलदा जिन्ना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिन्ना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन दी अजे परपक्ता नहीं होई। गुरमुख प्यारे हो, ए ते रोगी होए नू, एनू कोड़े होए नू, एनू विगड़े होए नू, मन बे

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देन वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आख के गया ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते एक गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भुख ही कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुकिया गड्डिया मंगनिया, मुक गिया दुनिया दिया दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनू पता लग गया असली दात की आ, देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।